0: तरफ देखो।
1: सू ओनली 4। ओह अब सिर्फ 3 बचे हैं।
0: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
1: 3 पत्तियां।
0: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीप

0: बिल्कुल, अब मैं नहीं मरूंगी सू।
1: बिल्कुल जॉनसन।
0: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
1: पत्ता?
0: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता

थे। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर पहुंच गया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ